0: मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ।
1: नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो फाइल लेने आया था।
0: फाइल लेने यहाँ?
1: यहाँ तो मैं बच्चों का गाना सुनने आ गया।